0: ब्रेकफास्ट के मेदु के मिबैग अलग में गेहूं तेरी ना हिस्सा को लानी जेमी एग टोस्ट तैयार कराने गए देंग मैं एग टोस्ट तैयार को लाम मागे ने चेसे बेड में नुए दे फाहरु का मैं की तेरे बाइंग ने चेसे की गे एग आप तो ऐहे हुन्ने चेसे नुए दान ही ना मिस हो दाल आगे मिस तैयार को लान हम वरम मीरु अत्तरे के टोस्ट मेदु मिकी आल देनी देंग मैं प्रोटीन के बावे तं एगे कुलेवे वरे सेहत फायदा होरी टोस्ट तैयार को लान गे मेदु में हिस्सा को लानी अरे जेमी एक टोस्ट तैयार को लम बेनु मारे ताके ती फुरत में दरने वाला ना मी अभी मी बेनु मणि सासम से लोगे देसम सा वाइट विनेगा देन शेलोट मी बेनु मणि गे तो कुदी फिया गे मी वागो ते की आमु का मी होना बोलते ती फिया बुरे तांग कोलंग ए गे होने मी दिलकं कुड़ा वाने एम विमा एम कुड़ा फिया देन मी बेनु मणि सासम से लगे दे बैग कोले बैग हम फ्रेश टाइम एफ होलो ना सेमरुस देन हतरु बीस sasam salage olive oil then the sasam salage whole grain mustard then sasam salage me koshafuri parsley eve sama me beinoni machang alang inge toni malaf then e for me beinoni hama me algne me kawattaru ge hama hatar foti pa then mayonnaise kole ves beinomani me beinomani takechki e me me beinomwa takechki sasam salage desam savine gaya kudafiya yaka kudafiya mitene hem kudifiya horene to shelotte to ege fiya inge to den sasam salage deba kole bag fresh thyme den lona kola ka semiris kole hataru bis sasam salage olive oil sasam salage desam sa whole grain mustard den sasam salage chopped parsley hataru foti pa den mayonnaise me beinu man ta kecheki den hama var fasya man inge to me furata mahama botatte ga vinegaya kurin vesme buni kudifia ko shala feya time ko ala fa den sasam se lege hataru ba ko le ba ga lonu ko la ka peppa ko le ngala ni ge to e fa ho den hama mi rangala mix ko la ni mix ko la fa ga ngane kai ro ko ku ba hatta lo rangala wa ni raha gandu ni kunna ne re nge to den e fa bis ka ka la ni den bis bis ka ka la fa ke ken viral gun me rangala kan ni guys wo mi finifin fo de ba hatta ngai rung awa ha bisesi huwe fa mitan ko lewa no lala mes fase ha wani den biska ka fa den mi ha den che go te ki kurin ekol de men to bo ta ta vine ga ya kudifia time den e getro lona ase mi rest to den e ge teriam mi alam vi theo mustard adi parsley e ge teriam ala fa rangala mix ko la vi e fa ha ma paanu ga mi kudu kudu mayonnaise ko le ungula ala fa den mi ek kuri ba paanu ga ungula ala fa e ge mati ga bista ko sha ala fa atura alam vi देंग ये फो मच्छंग हम कुड़कुड़ा टाइम कोलका पास्ले कोलका देंग मेरो अनेंगे तो कुड़कुड़ा चिली फ्लेक्स कोले विस लोगों में गाला फिर नोनी आमासे मिस कोले विस को मच्छब बुरो वाले मेरो अन लोगों में ने कितां कोले कुली को काम बेनो माबे इम कुली रहा लंन्या मेरो ऐता देतो एमी मिठाईयार कोलाने को तो कि वरा फसे अंगागने का फानर वरा का मिनट गे तेरे गालों में वरा बागु तुने ते गेंगुले रुगा तैयार कोल दे बेन वरा मेरो टोस्ट तैयार कोलान गे मेदु ब्रेकफास्ट में बैग में हिस्सा कोली उम्मीद करन कम दानी कम
1: The AKM Megahertz, Divay FM, Divay Inge, Munifu Filu Adirmuga, Abaduas.

0: अब कुरंचे मेंबरों के आदत वरे कीना कैंडिडेट उन्हें लिफावा वोट एवर वे फावा कमा मैं ऐसा बोलना चाहिए कि मिगर्स दिवे फिर मिगड़ी का दरनवा मुंगे खबर दरनवा ने मुनी खबर अड़से थी शुक्रिया और यहाँ पे फ्रेंड्स आमा रखा तेरे दुआ के दे अस्सलाम वालेकुम
1: नवदिया एक मेगाहर्ट्ज़ दिवे ही एफएम

0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: Lunch break. FM. No idea, I can megahertz.
3: दुआ कोई सारी नहीं तो कुछ ऐसा रो वाला नहीं था।
4: नो।
3: प्रॉमिस।
4: प्रॉमिस।
5: एमी हूँ था अब तो एकुगवो माँ बाउ तो भी।

अस्सलाम वालेकुम नोदी के मेगाहर्ट्ज़ दिवे एफ एम मिगड़ी गटी उन कॉल लांती बे मैं हूं तेरे नवारा उफावर वगुत कोड़कंगे देमु मिगड़ी गर में कोरिया गेंदा टी टाइम रिक्वेस्ट आए की गबदो को ले अर्गन शाहुदा टी टाइम रिक्वेस्ट मी शो है की एहुन तेरी न हम तफात एकी मालूमात तक मेहुन तेरिंग हम एदिला मी लव तक मैसेज तक मी हुरिहा बै तक काय की गर में कोरिया गेंदा प्रोग्राम में प्रोग्राम गा बैवेरी वेलुमा पीएसएम ऐप में दुर को मैसेज को लेवे ने डीएफएम 91 मी पेज मैसेज को ले देने रे मी कोन शो में गुलाल दे मुंदान दे शो गा बैवेरी वेला मी मालूमात वाह कद कादा गुडको हम मी ए दो हेग वाकी हासिल आवेन अडवा हालम बेन जक मवाणमा ए लवें अडो हाला कोमिस मिह का मैसेज देम बेनु आ कम वाणम ए फुर्सत इस मिशो गे तेने लिपिगेन दान एहेम वी मा मियतु के मि शो गे तेरें अ मि फुर्त मस फिश मट कवर रीत लवें इवा देन द मिशो गे देलव गुळवा इंगे मे चहाल देने माने की मैसेज के जरिया कोला रिक्वेस्ट का आदि गे तुरु गुळाला वाहक दक्काला लवे का रिक्वेस्ट कोला फरातु गे रिक्वेस्ट मिह मना देने हेम वी मा वर फुर्सत बोडवाणे वाकी लवें अडवा हालम बेनो चकम वाणम मैसेज को लैगे लवें अडवा हालम गे एक गोतकी मिबुना हे गुळा लैगे शहु मेन्नाय को मि वाहक दक्का ला लवे का रिक्वेस्ट को लुंग अने गोतकी देम मि फाह को लि हे मैसेज कुरा कोल्ला आयरो मि लवा गे नन लियला फवाके हास मैसेज का एकी गा फोन वाल देनो एमे मा मि दे फुर्सत बस मि हारु फिश के हुळवा लुमा फहु शहु मि जहाल देनी वर रीत लवे मि लवे फहु बद्दो कोल्ला अनन एहुन तेरिना एहुन तेरिंगे रिक्वेस्ट का एकी गा

0: best.
1: कड़ी में हमें हाथों कर तीरिस 9 मिनट वारा मैसेज बाद लावे रिक्वेस्ट को लाफा शाहू के मैसेज में होते मड़को रहेंगे मैसेज तो गुलालन तो यागें को लाफा पूरी अदानी नुगुड़ा से के ने बोने फेंगे हैं वे मैसेज का मम्मी हो रहा शाहू ही कुरेंगे हैं वे शाहू आ गुड़ा लंगे भाई शाहू अड़वा हिसाब घोरे जैया अंगाल देचे मी गुड़ा लन तो नोनी या मैसेज को तक किया देन तो मी मिहारो मैसेज कॉल लगे मैं लावे का रिक्वेस्ट कॉल उनका फुर्सत लिबे ने मेरे को तब वैसे मैसेज वे से बैंक शाह हो गए ये नोए शाहू आ गुड़ा ले वे को तक है मैंने किए मैसेज किया देना शाहू की ने इन्वेस्टिगेशन को नूनी में थी नूगुली फा आहर में टीम में जहाँ द दीपल रोड जेही लागो तो आदि मिला वा रीति कुछ जंगोले ने कुछ जवरं हास को दे शाहू आदि एफएम टीम ऐहम भी मा मी लावा जहाँ ल दें बोने लाफे ने हमें मा रोड जेही लागो तो मिला वा इवाल दी फबद्दो कोल्ला अर्नंग नावर नर्नोट कोल्ला इंगे वारा वागो तो बंग आदि मैं तो के मैं शो का वैस नर्नोट कॉल्ला आएगें लावे का रिक्वेस्ट कॉल्ला आधुनिक कुरिये दाव का गोताबे को तुम वहाँ का दक्का लामे हो रही हाँ बैठे के उन नर्ने में मा ये हुन तेरी ना मैं हुन तेरी के रिक्वेस्ट जहाँ दिन मार्मिंग नेस्टे शो है मैं शो एकी

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

द्वाकुं उले फरातक अलुकं कुरुं तिमं कलेगफानं हमकशवरं नही कुरवी कलेगफान विदालवाश तियबामी हुंगे एदुंतक तिमं कलेगफान तबावे वडे नुगन्नवानमे एहें वेज्जेनम तिमं कलेगफान मगुफरे दुनीस्कं कशवरे अदि एरुं तेदुमगु लिबिगेंवा मी हुंगे तेरें तिमं कलेगफान नुवी है।

0: वाली जमीन या किसी भी दूसरी जमीन पे।
1: मैं कहती हूँ तेरे की हम सफर आदि यकीन का सफर दियून फरहद इश्तिया डायरेक्टर की परिजात आदि साबात के डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी प्रोड्यूसर की मोमिना दुराइद सोशल मीडिया का मिहारस मी ड्रामा एवनी पुर तरही पे दिफा फुरतम एपिसोड के मंजर तरीत वुमा तारिंग के मेदुगा हुरी वरुगत केमिस्ट्री के सबबुं मिहारस सननी ट्रेंड वमु गिना बैकु गबुल करा गोत का मी मियाहरु एमे मोड ड्रामा एवुम के फुरसत बोडु उफेतुमे
2: खबरदार अगर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की शेरदिल खान
3: मेरा उस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है
4: इसे बात कर दो सब
5: हमारे सरदार से इस तरह बात करेगा
6: तू चुप होकर नीचे बैठ और अपनी बकवास
3: बंद रख बकवास तू भी बंद रख ज़फ़रान खान तुझे साथ मिलाए बगैर खेतों में हमला करवाने की हिम्मत कर नहीं
1: पाकिस्तान का अलग फैशन ड्रामा तो की तरह पास तेरा साथ हो ARY डिजिटल उन दखा में ड्रामा के हाथर एपिसोड में हाथे न वनी दखा फा फरहान सईद अनस के रोल उन फिरने में ड्रामा की कुड़ेरो यातीम वो मफो एन उफुली तकलीफ तक किया दे ड्रामा इं बाय मीहुन सिफ़ा कुरागो तुगा फिरिहें सिंड्रेला के वहाँ का मी ड्रामा का मी दक्क्या देनी मी मेरे हमसफर के लियों तेरिया सायरा राजा के एम में फ़ाहु के मासे के देमी पलाले अने ड्रामा जंजीरेन के मिहार फर्स्ट एपिसोड दक्का फवायर मी ड्रामा मी दक्कनी कोम्मे हफ्ते को बुध आदि बुरा से दुहु मी ड्रामा के वाहक बिना को फवनी पाकिस्तान के फरबदमती हिसाबे के नुफूज गद आईलाई के वाहक मी ड्रामा का मैगन कैरेक्टर की बिया मी बैमी कुड़ेनी सजल अली एने की अमिल मसकतुं कुड़ केफे हिंगा वरुगत मिजाज के अंगे कुचें एने के दिरुम के थेरे मुदसिर मी बैमी कुड़ेनी अमीर गिलानी मी कैरेक्टर अन्न हिसाबों मी वाहक के फोर गदवे किंदे मी ड्रामा इफाहक को लवे अनेक कैरेक्टर की शेर दिल के बैमी कुड़ेनी मशहूर अहसन हान मी ड्रामा का मी कुड़ेनी मी ड्रामा का मी दक्का मैगन आयला के पोड़ बेबे के बै मी आयला गोरी मैं फिर है मी हाँ के रोल आयला के तेरे को न सियासी कुलवर तका मुदल के मसल था के तेरे लोभी के हादिसा तके फिनी के इंदा मी ड्रामा कुरियत दा कोई बलंग एम्मे मिति भी पोड़ इंतजारे का मी ड्रामा एंग अड़गन कम दा अनेक कम की मी ड्रामा के दक्कुए दे मंजर ता फरंग ही गैम राज्य गति बेगे मी दे ड्रामास पला लंग एम्मे फसे हवाने यूट्यूब उं यूट्यूब का ए हफ्ता के एपिसोड तंग वरंग आवाहन अपलोड कुरमुंदे आदि देंगे पैदियों के कुरिंग अनिका विस रीत लविंग अडुहालमा।

0: ओएसटी
1: ओएसटी मिबा मिफहर और मिमी हांसा कुरनी इंगिलाबी रोहका वर्गद जजुपात तक गेनेस्ती मशहूर लवेखं ला कासा डेपपेल नोत मणि हेस्टम फेनिगेंदिया मी लवा हमेकेनी फिल्मी लवे कवरे बोडा मी किनबे कवेफवनी मिनिवंकमा एक्वेरिकमा आदि एकक अनिक कट्टका वा कुर्बानी के रमजकं इटली के मी फोक लवेन सिफकोदेनी नुकुडा फदा अजुमा कोम्मे फदा हालते गविस वफा तेरिकं मी लवा तिबेफ्रुं एमे फुरतमा अडोही स्क्रीनुं कमगवेस नोत फोनुं तकुरार कों अडोही लवे कमगवेस मी लवा मियदस हिता एमिनवर हम कुळलानी कमं उम्मीद कुरं मी हफ्तागे ओएसटी पिक आदे मणि हेस्टुगे साउंड ट्रैक बेला चाओ मी हाय साबो

0: ehnamaves nasifra tenudin oi gotan oti
1: konkam gati visnani
2: kamennue
1: kinevvi
2: waratta yaduko
1: miharaken as nasif abadu sunani warubaiye befa
2: hada masakate makurame
1: kurimves kure mames hendunu teduwen sura huttanula hama mi uleni kuramasakate mademves nuwan
0: fohiveke rinsi tura furolli nasifa visnunu kabul kurevunu masaleki masake buravumenu rinsi avure boda zahura ke nufus nasif ke sikundia veri vefavani rinsi matin nues engi hure nasif fohiwan feshi ehem veken nuane efada shakke ves rinsi ke hita veri veken nuane
2: sorry
0: masala halu kurmataka nasif buni rinsiya sama sai kollan nasif ulunu ekamaku rinsi ke mood batal veche samasa kurumuke shauku verikan gelleche vumaiku folwa lafa ane fara tangemburi nidi zahurage tiri uluma kudi kudi batal thangannam feshi namakan hedundumuke bataluka riti hedundum zahura iskanden feshi ताजा कुलता का शौक वेरवां फेशी, कुरिं जाहुराए की फुना ऐलो मुके वकी हां सतार्ती बेगेंगुले मी हेनु, एकांवेस बातल वेज्जे, एवरों निमुनी कीनु, इस तरीकानु का गादा मुशी कुले जस्सा फंको रीति कोता का स्टाइल वेस बातल कोली,
1: अहा जाहुरा,
0: फिहारे जाहुरा वन्ना निकों अंहेना कुगोवाले अड़ोइवुनु Zahura bala liru Samira warang hiniyas fa bala hatta geng huri. Samira eki Zahura wazif fa da kurao fi hun emme fahun riti akuri miha visme.
1: Durun fen famashan nues ingunu.
0: Zahura bola sha heduma bala lamun Samira buni.
1: Hadaha nale muri miha tiri change vifen.
3: Sali do, mihar kontakti uleni. Kihine kihine takantata?
1: Asta. ती दिखो वाह के मैं उम्र के बस मध के लोभी वाले में कुली बिच्छे
3: सीरियस को मरहबा मरहबा तेरे अब हाँ मेरी कुरम बेनो
1: ऐने बस बेनो वाले मेरी कुरा मशंग एंगुनो ऐच्छ की लोभी ली बेने होदंग उलुनी माय होदंग एंगुनी माय हिम मायूस से फनोने शकुआ कुरो मुहिंगी का स्वान का मैं नोन्ना
3: ती बुनी हम वारा बढ़ते दे
0: जाहुरावेस वारा गुफावी तजुरीबा के आदि का जहुरा बुनी नसीफ की वटांगे गावेस मसक के कुरामी है महु मुसा रेने तस निम्मा को में मसकते के पसेंटे नसीफ दिबे बाय फहरो वरा बोडो एचे लिबिफा अने पे फहरो एचे नुलिबिगें एता दुवा को हुसतावे सुनन जहे दुवाहकी मसक के गिना एकमकु मसक कथा का यानु विदुवे हे फतिगंडे की हंग उले फिया सीधा लकनु की हे मोहरे जहंग उले फिया इंगी दीगा जे हे नुवाता का बुरुमें दो वाले तुरफंग उले फिया काशी बिंदा गिन्दे ऐ फाहका गैस दुवाहक वेस नसीफ अच्छे हुनु पाये नु एमे फाहुन नसीफ अच्छे हुनी मसक के मेदुकंडालं बाया फरवाइंग होदं

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।